के तपाईँलाई तयारी सुन र सलित चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153577।

0: गोल्डन स्टार बोर्डिङ सँगै जोडिएको घर
1: प्रोप्राइटर सबिना जिमी तामाङ, सम्पर्क नम्बर 98040958089, मिसन टेडेन्ट सप्लायर्स,
0: हातबारी 9 तुमलिङकार सङ्खुवा सभा।
2: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
3: देख देख देख, अरे अरे बाप रे बाप, स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो।
2: दू चार भी लिखवा ले का।
3: अरे अरे
2: जिगर पलट।

0: हरेक शुक्रबार विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा गर्भवती जाँच गर्न प्रभास मेडिकल चैनपुर छ 0 पोइन्ट
1: पुरानो ग्यास्ट्रिक अल्सर हर्सिङ।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार, त्रिचोक प्रोभाइडर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9183577।